विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुंजत संजय तरै संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगया मुख द्वार जति सदा वै जुगत न जाने छड़ बै करबार।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद

तुदया गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाउ न जान मेरा, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज की पावन हजूरी च अमृत वेले तो इस वेले तक कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। गुरबाणी शब्द विचार का यह समा है। अज का पावन शब्द आप जिया ने भाई साहब जी पासों सरवण किया। सतगुरु महाराज जी अज के शब्द के राही मनुखी दुनियावी जीवन जो समझा चाहते हैं एक मन एक चित हो के समझण का

फिर की होएगा, फिर जो बीजिया वो वड्ढना पेगा, जो बीजिया वो खाना पेगा, क्योंकि कर्म कर्म दी खेड है। जेती सिरट उपाई वेखा विण कर्मा कै मिले लई, कर्म तो बिना किसे नू कुछ नहीं मिलता। पूरी दुनिया ऑल वर्ल्ड हर कोई आपो अपने कर्म दा बीजिया ही वड रहा है ते खा रहा है। ये नहीं कि सिस्टम इत्थे ही रुक जाना है, जदों तक दुनिया चलेगी ये सिस्टम चलेगा। जेहा बीजे सो लुणे, जो बीजांगे उही खावांगे उही वड्डांगे। बीजन लगियां ध्यान देखना करना पैना है भी मैं जहर तो नहीं बीज रहा, नफरत तो नहीं बीज रहा, मैं कोई माड़ा कर्म तो नहीं कर रहा जिदा मैनू फल, क्योंकि फल तो बाद च है ना, पहला बीज है फिर पुंगरेगा फिर वह बूटा रुख फिर फल है, तो जो फल मिल गया फिर कुछ नहीं हो सकता। जो बीजिया ही गया फिर तो फल मिलना ही मिलना है। ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछोताई है। महाराज कहिंदे मुड तो ही ऐसा कर्म ना कर जिदा तेनू अंत पछतावा होवे। माण वाला कर्म कर, तेनू माण होवे भी मैं चंगा कम कीता सी, चंगे कर्म कीते सी। ऐसा कम ना कर बाद च पछतावा ही पले रह जाए, रोना ही पले रह जाए। नहीं तो जिंदगी दी सच्चाई है, जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। आ कर्म रूपी खेत दे दिता, जो बीजोगे ओही पाओगे, जो बीजोगे ओही वड्डोगे। ये नहीं कि बीजै बेख मंगे अमृत वेखो ये न्याओ, तू जहर बीज के इत्थे आके कमे मैनू अमृत दे दियो, इदा नहीं होना। माड़े कर्म करके पाप करके बुरियाइया करके इत्थे तू आके झोली अड के कहीं मैनू चंगियां बख्शिशां दे दियो, सुख दे दियो, खुशियां दे दियो, किदा होएगा? कंडे बीजे आ ते फिर कंडे ही चुगने पैने आ, माड़े कर्म कीते आ ते फिर फल भी माड़ा ही भोगना पैना है। ये तो बीजन लगियां सोचना सी भी मैं की बीजन लगा की नहीं। माड़ा कर्म करन लगियां नहीं बंदा सोचता, चंगा होवे ना सदियां तो सलाह लैंदा है, ये कम कर लवां आ कम कर लवां। माड़ा करन लगियां तो किसे तो सलाह नहीं ली, किसे नू नहीं पुछया भी आ कम मैनू करना चाहिए कि नहीं। तो जदों माड़ा करना सी किसे नू नहीं पुछया, चंगा कोई करना सी ते वियां नू पुछदा है, वियां नू पुछ के भी नहीं करता, क्योंकि चंगा नेक कर्म करना औखा है ना। माड़े ते करा लो जिन्ने मर्जी दिन दिहाड़ी, जिन्ने मर्जी माड़े कर्म करा लो। साहब जी कहिंदे ध्यान रखी ये जिंदगी दी सच्चाई है, समझ आ गई है ते अपना बीज बदल लै, फल भी बदल जाएगा। तू बीज बदल नहीं रहा, तू कहना मैनू फल बदल के दे दे, फल किदां बदलेगा? तू बीज बदल, अपना कर्म बदल, कर्म बदलेगा तो फल आपे ही बदल जाना। कर्म बदल नहीं रहे असी, सोच बदल नहीं रहे, कर्म किदां बदलेगा? सोच जिदा दी सोच है कर्म भी उदा का ही होना है। अपनी सोच बदलीए ते गुरबाणी का खजाना सानू क्यों दिता है? सोच बदलन वास्ते, ताकि तेरी सोच गुरु वाली हो जाए, तेरी सोच भगत कबीर साहब वाली हो जाए, तेरी सोच पंद्रह भगत साहबाना वर्गी हो जाए, तेरी सोच परमात्मा वर्गी हो जाए। असी गुरबाणी इसलिए पढ़नी सी, इसलिए गुरबाणी का अभ्यास करना सी, साड़ी सोच बदल जाए। किन्नियां दी बदल रही है बाणी पढ़ सुन के, किन्नियां दी सोच बदल रही, जिन्हां दी बदली है मुबारक है, नहीं तो कईयां दी सोच उत्थे दी उत्थे ही है। फिर फल किदां बदलेगा? फल तो बदलेगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी सोच तो बदली नहीं। महाराज कहिंदे जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत है। ये खेत दे दिता तेनू, आ धरती खे, आ जिहड़ा शरीर है ना मिट्टी का, यह खेत है। इहदे अंदर जो बीजोगे उही कुछ मिलना है। जिहड़ा जमीन दे विच बीज होवे उही पुंगर के बाहर आउंदा है, जिहड़ा बीज अंदर जमीन दे मिट्टी दे गया ही नहीं वह पुंगर के बाहर की आएगा। अंदर साड़ी जड़ी सोच है उन्हें कर्म बना के फल देना है, बाहर दिखावे वाला कर्म करके गल नहीं बननी। भादोए भरम
ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਅਤੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਬਾ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਆ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹੋ ਹੋਵਾ ਸੇਧ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨ

दोहरा गया पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सहाये दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाये दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजाब प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंट छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हित शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े थनारियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब ताहां ता रसिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जियां दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मानीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निमानियां दे मान नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जिया दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर दे समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा अंदर प्रवान करनिया यात्रावा सफल करनिया धरों करों गुरु सिखी जीवन नाम बाणी दियाँ दातां बख्शनिया कलंगी धर सचे पातशाह जीओ आप जिया ने कृपा करनी मेहरामत करनी आउन वाला समा आप जिया दी याद आप जिया दे प्रेम दे विच बतीत करवावना आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्म अनुसार जीवन जाउन दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कलम तेरे पाने सरबत दा भला। दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा ख्वार होए सा मिलेंगे

दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, जैत श्री महला पंजवां, छंत घर पेला इको अंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात, चित वहो अन दिन नीत।

संत सुने यार हमारे सजन, एक करो बेनंतियां। तिस मोहन लाल प्यारे हम फिरो खोजंतियां। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक भौरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रै रंग रंगारे, एक तिल पीना तेरी जय। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना,

गुण अवगन ना पछाने, गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया, तिस हबो किछ सुहंदा, जन नानक तन सुहागन साई, जिस संग

तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोए ना किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर,

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुझ जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा। हर त्याव

हर त्यावै हर त्यावै तुध जी। से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर नाम त्याया जी। तिन टूटी जम की फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी। तिनका भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी।

विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसना तू जानाए है सोई जान जाने, हर गुण सद ही आख बखाने।

पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे।

बरनत पेन पेन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। केह बिद सजा प्रथम संसार, एकै रूप अनूप सरूपा। रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी। उत पुज खा

या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागे कर सपा

देख सज के हाजर है। दर प्रवान होए, प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। आप जी करो कृपा, अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन ज्यौण दी समर्था ते सूझ बख्शनी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सिख पढ़ दे।

संत सुन यार हमारे सजन, एक करो बेनंतियां। तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंतियां, तिस दास

पछाणे गुनहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हबो किछ सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार।

पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नवो न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई

प्रणाम समाणी दुख जन्म मरण पवखंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो सोम खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मुस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है।

माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य।

जिन्हों बात ने चल त्रू जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सूरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविया सच्चा।

वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सब विचार हो, वाहो वाहो का